0: ये थान साम लो सुन्यो गुजी छे छो किन सब सा छे ला वाया क्या शो
1: चु रहा ला आ ना जो सिम गवाया मी दी सांग लांग तुन्यो सु
0: योंगा सांग लांग जो
1: एस
0: जो